0: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, बॉलीवुड गोल्डन हिट्स, कीप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज मा।
1: दिल दीवाना, बिन सजना के।
0: आइतबार र मंगलबार दिवसो 4 बजे, सोमवार र शुक्रवार बेलुकी 10 बजे। पुराना बॉलीवुड संगीत को जादू तपाईं के रेडियो कीप्स एफएम मा।
2: एक घंटा तीनोटा मूवीज का सुपरहिट गीत
3: थ्री इन वन
4: एवरी सैटरडे 9 AM एंड थर्सडे 6 PM
5: व्हाट्स द सीक्रेट टू सक्सेस
6: सिंपल से यस टू रेडियो एडवर्टाइजिंग
5: योर ब्रांड आवर वॉइस वन मैसेज थाउजेंड्स ऑफ लिसनर्स
6: रेडियो एडवर्टाइजिंग अफोर्डेबल इफेक्टिव एंड कल्चरली क्लोज
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: अब इंटरनेट ढिलो होइन, छिटो, स्मार्ट र सुरक्षित।
8: Introducing Wi-Fi 6 with Subisu Suraksha.
0: Wi-Fi 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट।
8: साथै Subisu सुरक्षाले तपाईलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित।
0: हानिकारक साइट, असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ।
9: Subisu, छिटो पनि, सुरक्षित पनि। थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
10: 01-42-35-888-98-12-12-8-8-8
11: तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
12: अब धन्ना नमान्नुस्, नॉन स्टॉप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
13: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस्। ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।

0: एक्सप्रेस को साथ अब नेपाल भरी 14,000 भन्दा बढी हटस्पटहरुमा फ्री इन्टरनेट को मजा लिनुहोस्।
1: अब लाइफ इज अलवेज ऑन जहाँ पनि खुरु खुरु
0: कनेक्ट टु माय वर्ल्ड लिंक एंड ऑलवेज स्टे कनेक्टेड व्हेयरएवर यू आर।
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
3: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
2: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स एफएम 98.3।

जीवनयाता शीतलता किम जीवनयाता जीवित यैम अलिना पं छेगु जीवनया पला पला न्हि फुकिम किप्स एफएम छेगु जीवनया सदायम पासा किप्स 98.3 एफएम।

जीवन यात्रा शीतलता बीमा किप्स 98.3 FM जीवन यात्रा जीवित यही माँ किप्स FM अलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स FM छेगु जीवन या सदाय मुपासा किप्स 98.3 FM

जीवन यात्रा शीतलता बीमा जीवन यात्रा जीवित यही माँ पलेना पाँच छेगु जीवन या पला पला नहीं पुकी माँ किप्स एफएम छेगु जीवन या सदाय म पासा किप्स 98.3 एफएम

0: सुन्दै किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ज योर कम्पानियन
1: किप्स टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 9 बजेको छ
3: किप्स यू कूल
4: किप्स यू अलाइव
5: किप्स यू एंटरटेन किप्स 98.3 FM, your companion, your companion, your companion.
6: Are you ready to turn up the volume and rock out like never before? Rock fever. Rock fever. Rock hits of all time.

0: तेरी छ्याप छ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो।
1: अब धन नमान्नुस्, नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
2: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
3: Stay connected with your favorite station. Keeps FM 98.3 megahertz.
4: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
3: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
5: Keeps FM 98.3 megahertz. RJ Wanted.
6: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
5: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
6: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
5: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
7: The weekly countdown show of top 10 English numbers with exclusive segments, classic choice, info house, fresh hits, and many more. Do tune into Weekly 10.
8: Time, Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
7: on Keeps 98.3 FM.
9: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौं मेत
10: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: हरेक शनिबार बेलुकी 10 बजे
1: Keeps FM 98.3 megahertz RJ wanted
2: Do you have the voice, energy and passion to entertain people every day?
1: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners and bring music to life.
2: Clear voice, confidence and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
1: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 megahertz.
3: Hazur. न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल स्कुटर कार भ्यान जीप पिकअप हात्ती गाडी बस ट्रक एक्सकाभेटर ट्र्याक्टर जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी
4: सम्पर्क ब्याट्री सप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् बैटरी शॉप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स
5: What's the secret to success?
6: Simple. Say yes to radio advertising.
5: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
6: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
5: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 megahertz. Contact 567-3114. 567-3114.
7: अब इन्टरनेट ढिलो होइन छिटो स्मार्ट र सुरक्षित
8: इन्ट्रोड्युसिङ वाइफाई 6 विथ सुबिसु सुरक्षा
9: वाइफाई 6 सँग पाउनुहोस् हाई स्पीड र स्टेबल इन्टरनेट
8: साथै सुबिसु सुरक्षाले तपाईँलाई राख्छ अनलाइन ब्राउजिङमा सुरक्षित
9: हानिकारक साइट असुरक्षित कन्टेन्ट अब सबै इन्स्टेन्ट ब्लक हुन्छ
10: सुबिसु छिटो पनि सुरक्षित पनि
11: थप जानकारी तथा बुकिङका लागि
12: 01-42-35-888 98-12-35-888
13: You can dance.
14: You can sing. All you gotta do is
15: just tune in.
14: Keeps FM 98.3 megahertz, your companion. The radio of new generation.
16: Stay connected with your favorite station, Keeps FM 98.3 megahertz.
17: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
16: And don't stop there. Follow us on Instagram and TikTok too. Search Keeps FM 98.3 megahertz and hit that follow button today.
18: Raja Motiwa Motina Yewa Ni Pushi Changutu Kele
19: नेपाल भाषा या न्याय पुसे चौमी त
10: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़

0: Kids 98.3 FM. Your companion.
1: सुनाओ लो याद, सुनाओ लो गीत, Bollywood Golden Hits. Keeps FM 98.3 MHz ma.
2: Dil deewana, bin sajna ke.
1: Aitabar ra mangalbar diuso 4 baje. Somvar ra shukravar beluki 10 baje.
3: Tum ho akele, hum bhi akele, maza.
1: Purana Bollywood sangeet ko jadu, tapai ki radio Keeps FM ma.
4: नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका गीत संगीतको साथमा रमाइला सेगमेन्टहरू कार्यक्रम
5: म्युजिक मज्जा
4: प्रत्येक मंगलबार बेलुकी 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म र प्रत्येक बिहीबार बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म मात्र केप्स 98.3 एफएम मा
6: Keeps FM 98.3 MHz. RJ Wanted.
7: Do you have the voice, energy, and passion to entertain people every day?
6: We're hiring radio jockeys to host shows, connect with listeners, and bring music to life.
7: Clear voice, confidence, and creativity required. For the voice test, apply now at rj.keepsfm@gmail.com. Phone number 01-5673-114. 01-5673-114.
6: Be the next big voice on Keeps FM 98.3 MHz.
8: What's the secret to success?
9: Simple. Say yes to radio advertising.
8: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
9: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
8: Say yes to radio advertising where every word makes an impact. Keeps FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
10: तेरी झ्याप झ्याप बत्ती गएर हैरानै भयो
11: अब धन्ना नमान्नुस् ननस्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि
12: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स कुलेश्वर काठमाडौँ फोन नम्बर 5302678 5302678 लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स
13: यू कैन डांस
14: यू कैन सिंग ऑल यू गॉट टू डू इज
15: जस्ट ट्यून इन
16: Keeps FM 98.3 MHz, your companion. The radio of new generation.
17: Amilai Sunhos, www.keepsfm.com Marfot. Just tune in, radio, naya generation ko.

0: अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है, अरे घूटो में स्वैग है।
1: शुपोए बादशाह
0: बनता रहे फ्लाई बॉय, ये हम लाइफ पे हाई बॉय, ये तू रख तेरी राय बॉय, ये

मेरी फिर उसकी आंखों से जमेली, एक बारी दो बारी फिर निकली हसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मेनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नु घुमा के नचदे लगे सो सेक्स।

0: number 17.
1: दीवाने हैं दिलदार हैं.
2: Movie
3: Welcome to the Jungle.
2: Song
3: दीवाने हैं.

0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम।
1: चलने लगी है हवाएं, सागर भी लहराए।
0: क्लासिक हिंदी पॉप टाइम एट किप्स FM 98.3।

0: Morning Tea Time Hits प्रत्येक बुधवार बिहान 7 बजे Hits FM 98.3 megahertz मा
1: राजा मोतीवा मोती नायेवा ने पूछे चंगुट खेले
2: नेपाल भाषाया न्याय पुसे चौमेता
3: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन किप्स एफएम 98.3 मेगाहर्ट्ज़

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले बरी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

तारीख, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू, पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ हो बादशाह।

0: हिट्स एफएम 98.3 प्रेजेंट्स पॉप आवर।
1: मुझे कैसे पता न चला कि तू मैनू प्यार।
0: एवरी फ्राइडे 12 PM।

0: कार्यक्रम कलियुग टाइम कलियुग टाइम
1: Hollywood Times, every day, 11 to 12 p.m.

0: छाप बत्ती गएर हैरानै भयो।
1: अब धन्ना नमान्नुस्, नन स्टप पावर पाउन अब एकदमै कम खर्चिलो र भरपर्दो इन्भर्टर ब्याट्री ब्याकअप सिस्टमको लागि ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा सम्पर्क गर्नुहोला। सुरुवाती मूल्य मात्र 16,999 रुपियाँदेखि।
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
3: यू क्यान डान्स,
4: यू क्यान सिंग, ऑल यू गॉट टू डू इज
5: जस्ट ट्यून इन
4: KIPS FM 98.3 MHz, your companion, the radio of new generation.
6: What's the secret to success?
7: Simple. Say yes to radio advertising.
6: Your brand, our voice. One message, thousands of listeners.
7: Radio advertising. Affordable, effective, and culturally close.
6: Say yes to radio advertising, where every word makes an impact. KIPS FM 98.3 MHz. Contact 567-3114. 567-3114.
8: हजुर, न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्समा पाइन्छ मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान, जीप, पिकअप, हात्ती गाडी, बस, ट्रक, एक्सकाभेटर, ट्र्याक्टर, जेनेरेटर लगायत इन्भर्टरका ओरिजिनल ब्रान्डेड ब्याट्रीहरू विथ ओल्ड ब्याट्री एक्सचेन्ज फेसिलिटी।
2: सम्पर्क ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स, कुलेश्वर काठमाडौँ। फोन नम्बर 5302678 5302678। लोकेशन को लागि गुगल गर्नुहोस् ब्याट्री शप न्यू काठमाडौँ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोनिक्स।
5: Stay connected with your favorite station, KIPS FM 98.3 MHz.
7: Join our community on Facebook for the latest updates and all the music you love.
5: And don't stop there, follow us on Instagram and TikTok too. Search KIPS FM 98.3 MHz and hit that follow button today.
9: KIPS FM 98.3 MHz. Your companion. Your companion.
10: Three in one.
11: From the movie, John Tirunam.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।